0: रेडियो मेलम्ची 107.3 MHz
1: चर्चित एवं लोकप्रिय गायक बलबहादुर वाइबाको नयाँ लोकसेलो एल्बम कति राम्री बाहुनी।

0: Elimbu FM 89.6 MHz.
1: हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो धन्यवाद सहित प्रार्थना लस्युगो नला विश्वासी चमक लस्युगो जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माई फेथला अङ्क एक रे रङनिदा स्वागत मुला नियोग तामाङ तिनीला चु कार्यक्रमला शीर्षक मुला धन्यवाद सहित प्रार्थना लसुगो गाला विश्वासी चमक बसिखाऊ तिनी रङ्गादिदेन प्रार्थना लामा याङसी थान्दोला सेम वृत्तिला बारिदी तिगै तम जुबरी सेमुला याङला प्रार्थना कदे हाइमा नमन आनन्द दिन धन्यवाद त्रिङबा तिम तादोला एक थेसनुकी पाँच अध्येला सोह्रदेखि अठारी अठार विमुव सदन ताङसी च्यु पछि सदन प्रार्थना लौ दुःख सुख जस्तोन तसै धन्यवाद पिनगो तिग दविसम ख्रिस यसुदेन छ्याम गिक तबा एनी गदिसे चुराङबा लगै बिसी परमेश्वर से विवा मुला जब याङ प्रार्थना लवा समस्या ध्यान केन्द्रित लामुला चुसे याङ द नङ्याम दुःख पिनमुला देन दुखी तुलाइदिमुला तसै जब याङला ध्यान चु समस्या ज्ञाम याङ द छुटकारा पिनमा परमेश्वरलाई क्षमतरी तामुला थेरै याङला दुःख धन्यवादरी परिणत तामुला यदि रङ्सी हाजी भई तामला लागिरी प्रार्थना लसुजी थेरेन्दे प्रार्थना लिच्छ रङ दाते दोना नोन थे बारे चिन्तित हुसुला विषम चुल अर्थ चु हिनबागी रङ्सी दाते दोना थे परिस्थितिला हेर्छ लाभ्री लसुला रे फिलिपी चार अध्यायला सात थेन जे समझले नोन पङबरी अहमसेला परमेश्वरला शक्ति छे एनी गदेला तिङ देन एनी गदेला सेमदा यसरी रक्ष लाला जब याङ राङला तिङ्री विश्वास लाला कि परमेश्वर से ज्ञान मुसुला देन रोसे याङदा याङला अनुरोध पुरा लाभरी छोना माया लसुरमला जब याङसे नच्च महसुस लजीबा चिन्ता शान्ति से प्रतिस्पादन लामुला एक पत्रुस पाँच अध्यायला सात एनी गदेला बेनन मो बो बोमो परमेश्वर दसुम इन्गो तिग्द विषम रोसे एनी गदेला वास्ता लसुमुला याङसे याङला लुइला बोज काटे राङमघ्याम हडप्तोला थेन दे थेनी गदेला परमेश्वरला बम्री थान्दोला याङला आब परमेश्वरला लागेर याङला प्रार्थना चुराङबा तादोला हे परमेश्वर गदा चिन्ता ग्लाब्दा ताम दार्यम राङला बिम्बा नचुदा राङला हाम्बा यारी पिन्बा मुला गदा थाहा मुला दार्यम राङसे गाला लागेर चुला हेर्छ लसुला एक कुरान्थी पाँच अध्यायले सात तिक दबसम याङ विश्वास ज्ञाम ब्रामुला नाङबा तामला आधारी आइन्बा यद्यपि याङसे प्रार्थना लवबिच याङला मिसे म्राङबरी हम्बा परिणाम गति योनन नाङबरी अहम याङसे डाङबरी आवश्यक मुला कि परमेश्वर से माया लव गदिदा हेर्चा लभरी हाइमा दमन विश्वास योग्य मुसुला देन रोसे राङदा लानन माया लसुमुला थेन्डे दारेम याङ जेखेन्थे छ्यानला लागिरी ब्रन्जीव मुला जब याङला प्रार्थनाला जवाफ पिन्ला प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 री सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रि बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार
1: टाइम चेक इट्स 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बजेको छ।